आद पुरख जिसकी याद आन तिसको मिलिया हर निदान, तिसकी गतमित कही ना जाए नानक जन हर हर ते आए। बसंत महला पंजवां, मन तन भीतर लागी प्यास गुरदयाल पूरी मेरी आस। किले विख काटे साध संग नाम जपयो हर नाम रंग, गुरप्रसाद बसंत बना चरण कमल हृदय और तारे। सदा सदा हर जस सुना रहाओ समरथ स्वामी कारण कारण, मोहया नाथ प्रभ तेरी शरण। जी जंत तेरे आधार कर कृपा प्रभ लेह निस्तार, भव खंडन दुख नाश देव।

जोगी जंगम अरसन्यास सब ही पर डारिये फास। जेह जे हर को नाम समार ते पवसागर उतरे पार। जन नानक हर की शरणाए दीजे नाम रह गुण गाए बसंत महला नावा। माई मैं तन पायो हर नाम मन मेरो धामन ते छूटो कर बैठो विश्राम रहाओ। माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान लोभ मोहे परस ना साकै गही भगत भगवान। जन्म जन्म का संसार चूकार तन नाम जप पाया तृष्णा सकल विनाशी मनते नहीं सुख माए समाया। जा कहो दयाल कृपा निध सो गोविंद गुण गावै कहो नानक बिद की संपै को गुरमुख पावै। बसंत महला नावा मन कहां बिसार्यो राम नाम तन बिनसै जम स्यों परै काम रहाओ। एहो जग तुए का पहार तै साचा मान्या के विचार तन दारा संपत ग्रह कै संग ना चालै समझ लेहे। एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भजते एक रंग बसंत महला नावा। कहां पूले ओरे झूठे लोभ लाग कछ बिगड़ियो नाहन अजहो जाग रहाओ। सम सुपना कहो जग जान बिन सैशन मैं साची मान। संग तेरे हर बस्त नीत निसबासर पाइता है मीत बार अंत की होए सहाय कहो नानक गुणता के गाए। बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जग कौआ नाम नहीं चीत नाम विसार ग्रह देख पीत। मनुआ डोलै चीता नीत जग स्यों तूटी झूठ प्रीत। काम क्रोध बिख बज्जर भार नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ। कर बालू का कुमन घेर बरखस बाणी बुध बुदा हेर मात्र बूंद ते तर चक फेर। सर्ब जोत नामै की चेर सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पग लागो तोर। नाम रता चाहो तुझे और नाम दुराए चलै सो चोर। पत खोई बिखियन चल पाए साच नाम रतो पास्यों कर जाए जो किश कीनस प्रभर जाए। पै माने निरपो मेरी माए कामन चाहे सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग। खीलै बिकसै ते तो सोग प्रभ शरणागत कीनस होग। कापड़ पहरस अधिक सिंगार माटी फूली रूप बेकार। आसा मनसा बांधो बार नाम बिना सुना कर बार। गाछो पुत्री राजकुमार नाम भणो सच दोत सवार। प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिखत्यास निवास। गुर शब्दी बिखत्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तोहे। नानक ठांडे चाहे प्रभु दयार तेरे नाम संतोखे कृपा धार। बसंत महला पहला मन भूलो परम

आगे कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैसहो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे। इंद्री की जूठ उतरस नाही, ब्रह्म अगन के लूठे। अगन पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया। जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी जिनी कारा। कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मांग, कह चंदन चोवा बहुत सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, ऊहां तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जन सगर बिकल ब्रह्म काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै, लोग हसै। चरण कमल मेरा ही अरे बसै रहाओ। जैसे अपने तरह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना राम नाम ना छड़ै। गंगा गया गोदावरी, संसार के कामा। नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा। लोभ लहर अत निजर बाजे, काया डूबे केसवा। संसार समुंदे तार गोबिंदे, तार लै बाप बीठला। रहाओ अनल बेड़ा हों खेव ना सकौ, तेरा पार ना पाया बीठला। हो दयाल सतगुर मेल तू, मोको पार उतारे केसवा। नामा